0: इंसाफ का मंदिर है ये, इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर है हमारे सभी सुनने वालों की सेवा में। मेरे तरफ से हर एक को सादर नमस्कार और आदाब अर्ज़ों। ये है ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है।
1: निर्धन
0: जो बीमार या लाचार है, भगवान से तंदुरुस्त के लिए प्रार्थना या तो अल्लाह से दुआ किया जा रहा है उन सभी के दुख और गमी हमेशा के लिए दूर करने के लिए। जिन लोगों के घर पर खुशियां ही खुशियां है, सारी सालगिरह, विवाह संस्कार, जन्मदिन या तो प्यारा प्यारा बच्चा पैदा हुआ है, तहे दिल से बधाई और मुबारकबाद पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। सुनने वालों, आज शनिवार का दिन है, आप सभी सुनने वालों को एक शुभ सुबह शुभ दिन पेश किया जा रहा है, शुभ वीकेंड रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से बस पेश किया जा रहा है। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर जो 24 घंटा लगातार आप सभी के लिए होता है, 24/7 ये टेलीफोन नंबर बराबर होता है 030-265-6060 और स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 030-262-6611। हमारा वेबसाइट radiosbs.nl, उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन, टैबलेट, आईपैड के जरिए, कंप्यूटर के जरिए ये प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं और दुनिया के कोने कोने में सभी इंटरनेट रेडियो के जरिए भी ये प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। मैं हूं आपका खिदमत गुजार रबीन। यहां से ये प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। भजन यात्रा प्रोग्राम का पहला भजन हमेशा होता है सुबह सुबह लो शिव का नाम, पेश किया जा रहा है हमारी सभी सुनने वालों के लिए और सभी भक्त बरानियों के लिए।

गोपाल जी की आवाज में आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई रेडियो SBS के जरिए भजन यात्रा प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। चलिए अबकी बार सेन रामबरन की आवाज में ये सुंदर राम जी का भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS के जरिए सेन रामबरन के आवास में ये सुंदर भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। सुनने वालों स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-262-66-6611। इसी तारगी नंबर पर टेलीफोन नंबर पर हमेशा स्टूडियो की ओर आप तार कर सकते हैं। एक भजन प्रोग्राम में होगा और वो भी सोनू निगम की आवाज में।

और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले भजन यात्रा प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं हरिओम शरण जी की ओर। बहुत सी सुनने वालों होते हैं जो हरिओम शरण जी के आवास में भजन काफी पसंद करते हैं, तो उन लोगों के लिए ये सुंदर भजन पेश किया जा रहा है।

सुंदर औरती सुंदर भजन बस हरिओम शरण जी की आवाज में आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई। चले प्रोग्राम में गोल्डन वॉइस ऑफ प्रदीप की आवाज में श्री हनुमान चालीसा पेश किया जा रहा है।

0: सुंदर सा श्री हनुमान चालीसा बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। चले प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं अब की बार बजरंग बाण की ओर। उसके बाद प्रोग्राम में आरती भजन पेश किया जाएगी आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। तो चले मिलकर बजरंग बाण को सुनते हैं आज के प्रोग्राम में जो पेश किया जा रहा है।
1: भगवान रुद्र के गुणों की झलक आंचल के दीप की तरह स्पष्ट परिलक्षित होती है। श्री रुद्र शमशान वासी है, श्री हनुमान जी गिरिवन वासी है। शिव जी ने विषपान किया था, हनुमान जी ने सूर्य बिंब को ही निगल लिया था। श्री शिव जी सर्पों की माला पहनते हैं, श्री हनुमान जी को नाग यज्ञोपवीति कहा गया है। शिव जी आशुतोष है अर्थात शीघ्र प्रसन्न होते हैं। श्री हनुमान जी भी दुखों के दलदल में फंसे हुए अपने भक्तों की रक्षा के लिए तुरंत दौड़ पड़ते हैं। जिमे अमोघ रघुपति कर बाना, एही भांति चलेउ हनुमाना।

0: सुंदर सा बजरंग बाण बसपुर गांव में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए भी आपने सुना। सुनने वालों चले यहां से प्रोग्राम में आरती भजन की ओर हम आपको ले चलते हैं और आरती भजन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से, हमारे तरफ से, हमारा पूरा परिवार की तरफ से आप सभी सुनने वालों के लिए, सभी भक्त प्राणियों के लिए, उन सभी के लिए जो बीमार या लाचार है, सभी दुखित प्राणियों के लिए, सभी बच्चों के लिए, सभी जो आज नौकरी करने वाले हैं, काम करने वाले हैं, सभी को शुभ दिन पेश किया जा रहा है। और हमारे सभी सुनने वालों जो दुनिया की कोने कोने में रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं, उनके लिए और उनके पूरा परिवार के लिए, हर एक के लिए शुभ सुबह शुभ दिन के साथ ये सुंदर आरती भजन बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।
1: आर्त व्यक्ति ही भगवान की शरण में जाते हैं, आर्त की पुकार ही आरती है। आरती अपने इष्ट देव की प्रसन्नता के लिए की जाती है। पूजा में भूल से या प्रमादवश कोई त्रुटि रह जाती है तो आरती करने से उसकी पूर्ति हो जाती है। 1, 5, 7 आदि विषम संख्या के दीप जलाकर आरती करनी चाहिए। इष्ट देव की प्रतिमा के चरणों में 4 बार, नाभि पर 2 बार, मुख पर 1 बार और नीचे से ऊपर तक 7 बार आरती घुमानी चाहिए।

0: सुंदर सा आरती भजन बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों, यहां तक आज शनिवार का भजन यात्रा का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई। आशा उम्मीद है कि आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया रेडियो SBS की जरिए जो पेश की गई है। रेडियो SBS का पूरा टीम की तरफ से आप सभी सुनने वालों सभी भक्त प्राणियों को एक शुभ सुबह, शुभ दिन, शुभ वीकेंड पेश किया जा रहा है।
1: Radio SBS wens je een heel fijn weekend. En nu reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.

जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम को सुनते हैं, हमारी सभी सुन वालों जो रेडियो SBS का ऐप पर ऐप किया है, सभी को वेलकम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग आप सभी को कहा जा रहा है। काफी सुन वालों बस रेडियो SBS का ऐप पर ऐप किया है। पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम यहां से आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम जरूर है और जरूर आप सुनते ही रहना। ये प्रोग्राम गर्मा गर्म कॉफी चाय के साथ हमेशा आप सभी सुन

गर्मा गर्म कॉफी चाय बस पेश किया जा रहा है और खास तौर पर आपके लिए, आप जो हमेशा हमारा प्रोग्राम सुनते हैं, हर सुबह भी स्टूडियो की ओर तार कर रहे हैं, वो आपके लिए गर्मा गर्म कॉफी बस पेश किया जा रहा है। तो चले प्रोग्राम में पहला गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं। पहला गाना जो प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है

आशा जी की आवाज में ये काफी प्यार भरी गाना आज की प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। आशा रहा उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और काफी पसंद किया है। रेडियो SBS के जरिए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में जो पेश की गई है लाइव की जरिए प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। किशोर और आशा जी के बाद मोहम्मद रफी प्रोग्राम में।

हमारा फेवरेट एक्टर धर्मेंद्र का एक्टिंग किया हुआ फिल्म कब क्यों और कहां, उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए मरहूम मोहम्मद रफी की आवाज में। चलिए धर्मेंद्र का एक और मूवी की ओर, फिल्म की ओर, तुम हंसी मैं जवान। मरहूम मोहम्मद रफी एक बार फिर से प्रोग्राम में,

मरहूम मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना आज के प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। चले प्रोग्राम में तलत महमूद और लता जी की ओर। और अब की बार हम आपको ले चलते हैं फिल्म का नाम रूप की रानी चोरों का राजा। द मैन विद द गोल्डन वॉइस तलत महमूद एंड द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया लता मंगेशकर। तो रूप की रानी मैं चोर

दलत महमूद और लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में मोहम्मद रफी एंड लता मंगेशकर। हम आपको ले चलते हैं अपनी बार फिल्म दुलारी की ओर। मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में ये गाना बस पेश किया जा रहा है कि मिल मिल के गाएंगे। काफी पुरानी फिल्म है, फिल्म दुलारी। उन्नीस सौ 1949 का फिल्म, 1949 का

लता जी की आवाज में फिल्म दुलारी का गीत पेश की गई है। सुनने वालों चले प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं यशुदास की ओर। हमारी बहुत सी सुनने वालों होते हैं जो यशुदास की गाने बहुत पसंद करते हैं।

यसुदास के आवास में पेश की गए चार दिन की जिंदगी है। फिल्म का नाम एक बार कहो, 1980 का फिल्म, 1980 का फिल्म का गीत यसुदास की आवाज में बस पेश की गई। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है, हर एक को खबर कीजिए रेडियो SBS के बारे में। किशोर कुमार

किशोर कुमार के आवाज में ये गाना भी आपने सुना जो आज की ये प्रोग्राम में पेश की गई है। चले प्रोग्राम में लता मंगेशकर की ओर हम आपको ले चलते हैं।

लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म दुल्हा दुल्हन, उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। लता के बाद हम आपको ले चलेंगे मरहूम मोहम्मद रफी की ओर। एक नारी दो रूप फिल्म का नाम होगा। मरहूम मोहम्मद रफी की आवाज में अब की बार

गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में एक गाना आज की प्रोग्राम में द हार्ट ऑफ द मिलियंस द माइटी मुकेश की आवाज में पेश किया जा रहा है। संसार है एक नदिया, हम आपको ले चलते हैं द हार्ट ऑफ द मिलियंस द माइटी मुकेश की ओर।

बिलियंस द माइटी मुकेश की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। मुकेश के बाद हम आपको आज की प्रोग्राम में फिर से ले चलते हैं लता मंगेशकर की ओर। एक काफी पुरानी फिल्म का गीत अब की बार आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। लता मंगेशकर की आवाज में जरूर आप सुनते ही रहना।

0: और रेडियो SBS के जरिए लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम भी पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में एक और गाना लता जी की आवाज में पेश किया जा रहा है, साथ में होगा महेंद्र कपूर।
1: जिस

रेडियो SBS के जरिए। वही तो नहीं ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई महेंद्र कपूर और लता जी की आवाज में अभी आपने सुना ये खास गाना। चले प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं मोहम्मद रफी और आशा जी की ओर से। रामचंद्र का संगीत पर एक गाना पेश किया जा रहा है, आपका चेहरा माशाल्लाह। गाना का बोल है आपका चेहरा माशाल्लाह, मोहम्मद रफी एनाशम।

0: कर रहा हूँ।
1: भैया छोड़ो ना।
0: क्यों छोड़ू?
1: प्लीज समझो ना।
0: क्या समझूं?
1: वो लोग देख रहे हैं।
0: अरे तो देखने दो और जलेंगे।
1: अच्छा तो ये बात है, तो मैं और पास आऊँ?
0: आओ ना।

रेडियो SBS की जरिए खासतौर पर लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में गाना बस पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। और आज का प्रोग्राम जरूर आप सुनते ही रहना, मोहम्मद रफी एंड सुमन कल्याणपुर, फिल्म का नाम फर्स्ट

मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। आसरा उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। चलिए एक और गाना मरहूम मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाज में बस पेश किया जा रहा है, जरूर सुनते ही रहना।

गाना आप सभी ने सुना, मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर के आवाज में सुनकर और काफी पसंद किया है। काफी खूबसूरत पुरानी फिल्म का गीत आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई। हम आपको ले चलेंगे लता जी की ओर और लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

रेडियो आवास में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 030-262-6611 और रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl। लता के बाद महेंद्र कपूर की आवाज में गाना पेश किया जा रहा है बाहरी फिर भी आएंगे।

ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए। अब की बार हम आपको ले चलेंगे लता मंगेशकर की ओर।

0: लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना आज के प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों, आज के प्रोग्राम में एक गाना पेश होगा मुकेश किशोर कुमार एन महमूद के आवाज में। चले मिलकर ये गाना को सुनते हैं और फिल्म का नाम है हम जोली।
1: हरिओम हरिओम हरिओम।
0: द माइटी मुकेश, द मैन विद एवरग्रीन वॉइस किशोर कुमार और महमूद के आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।
1: बेटी, ये भारत है।
0: फिल्म का नाम हम जोली।

0: तुम अभी तक हो नीचे, सुबह सवेरे जाग के पड़ गए मेरे पीछे, चांद पे दुनिया पहुंची है, तुम अभी तक हो नीचे, सुबह सवेरे जाग के पड़ गए मेरे पीछे। माफ करो, इंसाफ करो, मुश्किल बड़ी आ पड़ी, अरे ना मैं राजा ना वो रानी, वो मेरे पीछे पड़ी। यू
1: आई डोंट नो,
0: यू मैं क्या बोली जी, यू टेल मी,
1: आई डोंट नो,
0: यू टेल मी मैं क्या बोली जी। ओ बाप,
1: भांडों की तरह नाच कर और गवैयों की तरह गा कर ये फैसला नहीं हो सकता, ये फैसला कल अदालत में होगा।
2: द हार्ट ऑफ द मिलियंस, द माइटी मुकेश, किशोर कुमार और महमूद की आवाज में फिल्म हम जोली का गीत आप सभी

रेडियो SBS की सीरीज गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई खास तौर पर पद्मश्री मोहम्मद रफी मरहूम मोहम्मद रफी की आवाज में खास गाना भी आपने सुना। चले लता जी की ओर हम आपको ले चलते हैं।

गाना जो पेश की गई लता मंगेशकर की आवाज में, मेरे दिल में हल्की सी, अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था परस मने, उसी फिल्म का गीत आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गए हैं। चलिए अब की बार हेमंत कुमार एंड लता की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

उसमें ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है, वेबसाइट होता है radio.sbs.nl। चलिए फिल्म आवारापन जुजाना की आवाज में एक गाना पेश किया जा रहा है। अब आप बोली चलते हैं फिल्म

में पेश की गए रेडियो SBS की जरिए अभी आपने सुना। मैं हूं आपका खिदमत गुजार अमीन और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर है और जरूर सुनते ही रहना। सुनने वालों हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए टेलीफोन नंबर है 0325।

अरे मित्र की आवाज में रेडियो SBS के जरिए ये गाना भी आपने सुना आज के प्रोग्राम में जो पेश की गए

और बेहद पसंद किया है। चलिए अपनी बार तुलसी कुमार NKK की आवाज में गाना पेश किया जा रहा है। तुलसी कुमार NKK प्रोग्राम में।

तुलसी कुमार एन के आवास में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई रेडी फिल्म का नाम, उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना आज की ये प्रोग्राम में। चलिए प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं कुमार सानू के आवास में गाना, और अब की बार फिल्म का नाम होगा इंडियन बाबू।

फिल्म का गीत उस प्रोग्राम में पेश की गई। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है सभी कामों का आज के लिए। टेलीफोन नंबर है 0325656560। सोनू निगम एंड अलका।

की गई सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना कुमार सानू और अलका की आवाज में ये गाना

की सेवा में बसपेश किया जा रहा है। सुनने वालों आज शनिवार का दिन है, शनिचर का दिन, मतलब होते है कि लोकल टाइम का प्रोग्राम हर शनिवार 12 बजे से लेकर के और 2 बजे तक आप सभी सुनने वालों की सेवा में बसपेश किया जा रहा है। सबसे पहले आप सभी सुनने वालों को अनहेल खुद अमिदाख शुभ दोपहर पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का ये खास लोकल टाइम का प्रोग्राम जरूर है और जरूर सुनते ही रहना, जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। इस वक्त हम देख रहे हैं हॉलैंड देश के अंदर में बहुत सी सुनने वालों बस प्रोग्राम सुनते हैं और हॉलैंड देश के बाहर देश विदेश में भी सभी को वेलकम और लोकल टाइम का प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना। चले पहला गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं, जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस भी

रेडियो SBS की जरिए लोकल टाइम का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। अनहेलर खुद मेरा रेडियो SBS।

कुछ मैथिली सॉन्ग्स आप हर एक के लिए आज की प्रोग्राम में पेश की गई। पहला गाना था लोकल टाइम का प्रोग्राम का, जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई।

सबसे खूबसूरत शहर यूट्रेख्त शहर से रेडियो SBS का फुल डिजिटल स्टूडियो से ये गाना सुंदर आवाज में सुनीर की आवाज में पेश की गई। आसरो मीठे सुनकर और बेहद पसंद किया है। लोकल टाइम का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है मोती बाला भोला सिंह प्रोग्राम में। हाँ है लखुदा मेरा रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं, आपके साथ हजारों हजारों सुनने वालों बस प्रोग्राम फॉलो करते हैं दुनिया की कोने कोने में।

ये गाना बस आज की ये प्रोग्राम में पेश की गई है। सुनने वालों स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-262-66-11। चलिए अपनी बार ये गाना की ओर। पुरानी फिल्म का गीत है, लोकल में आपके लिए पेश किया जा रहा है रेडियो एसपीएस की जरिए लोकल टाइम प्रोग्राम में।

हमारी सभी सुनने वालों को शुभ दोपहर अनहेल खुदामिदा जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम सुनते हैं बहुत से कॉम्प्लीमेंट्स अंदर आते हैं आज के लोकल टाइम के प्रोग्राम के बारे में खूबसूरत गाने नख में जो पेश किया जा रहा है जैसे कि ये गाना

हर शनिवार 12 बजे से लेकर के 2 बजे तक लोकल टाइम का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है रेडियो SBS की जरिए। हमारा वेबसाइट की जरिए भी प्रोग्राम अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर की जरिए आप सुन सकते हैं। चलिए एक ट्विस्ट मेटली की ओर।

का नंबर स्पीच की गई। आज की इस खास लोकल टाइम का प्रोग्राम में सुनवालू चले प्रोग्राम में राजेश शिव नंदन की ओर हम आपको ले चलते हैं। गाना जो अब की बार पेश किया जा रहा है आज की इस लोकल टाइम की प्रोग्राम में रेडियो SBS की जरिए

किया जा रहा है और लोकल टाइम का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं रेडियो SBS की जरिए। मिस्टर सागर मलिक प्रोग्राम में फिल्म त्रिशूल का एक खास गाना पेश किया जा रहा है, मोहब्बत बड़े काम की चीज है।

में एक गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए, चुम्मा दे देना। चलिए अब की बार उमर की ओर हम आपको ले चलते हैं और पेश किया जा रहा है ये गाना, हम थे जिनके सहारे।

तकरीबन 2 बजे तक ये प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और हमारा प्रोग्राम भी तकरीबन 2 बजे तक आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश होगा। चले मुख्य इस प्रोग्राम में रेडियो SBS Vanuit het mooiste stad van Nederland, Utrechtse Hersey, Saloze, je programma is hier aan de hand. Radio SBS, full digital studio.

और रेडियो SBS के जरिए मुखीस के आवास में कासे को मिक्स बस प्रोग्राम में पेश की गए है। बहुत सी सुनने वालों बस प्रोग्राम सुनते हैं हॉलैंड देश के अंदर, हॉलैंड देश के बाहर, देश विदेश में। चले प्रोग्राम में एक चटनी

सुन जो आज के प्रोग्राम में पेश की गए सभी सुनने वालों की सेवा में लोकल टाइम का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए। मैं हूं आपका खिदमत गुजार रबीन और प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना। चले बॉब माली मिक्स की ओर।

रेडियो SBS के जरिए बॉब माली मिक्स आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई रेडियो SBS के जरिए। सुनने वालों स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 032-266-6611। चले प्रोग्राम में मिस्टर राहुल थियोर।

रेडियो SBS का वेबसाइट रेडियो SBS.nl उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड या कंप्यूटर के जरिए हमारा प्रोग्राम को भी आप सुन सकते हैं। चले प्रोग्राम में संजय की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में।

रहे न रहे चाहे हम और तुम। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। चलिए आज की प्रोग्राम में एक बार फिर से सचिन की ओर हम आपको ले चलते हैं और ये गाना पेश किया जा रहा है चुम्मा

सुन वालों आहिस्ता आहिस्ता लोकल टाइम का प्रोग्राम जो है खत्म समाप्त होने पर आ रहा है। तकरीबन 2 बजे तक हमारा प्रोग्राम रहेगा और लोकल टाइम का प्रोग्राम भी आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जाएगी तकरीबन 2 बजे तक।

में पेश की गई आप सभी सुनवलों की सेवा में। सुनवलों एक आखिरी गाना आज की लोकल टाइम की प्रोग्राम में पेश किया जाएगी और इसी गाना के साथ हमें इस आदत और आज्ञा दीजिए, कल सुबह ठीक 8 बजे मैं आप सभी सुनवलों से बस फिर मिलूंगा। तब तक के लिए हमें इस आदत और आज्ञा दीजिए और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना। अभी न्यूज और मौसमी समाचार के बाद RJ आंशलिक के जरिए बस प्रोग्राम पेश किया जाएगी। मैं आप सभी सुनने वालों से कल सुबह ठीक 8 बजे फिर मिलूंगा। मैं था आपका खिदमत गुजार रबीन। आप सभी सुनने वालों को शुभ वीकेंड और हमारा आज का प्रोग्राम सुनने के लिए लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। फिर मिलेंगे कल सुबह ठीक 8 बजे भजन यात्रा प्रोग्राम लेकर के।

हेलो नमस्ते और आदाब। मैं हूँ आपकी आरजे अंशिली क्रमलाल, जो आपका तहे दिल से स्वागत करती है प्रोग्राम गीतों के लहर पे। हेलो अलमागल, दिस इज यू आरजे अंशिली क्रमलाल, तो यू वार्ट वेलकम हेट इन इट प्रोग्राम गीतों के लहर। Wilt reageren? Kan het altijd. Surf naar de website www.radiosbs.nl of bel gerust met 030-262-6611. En voor alle andere info kunt u altijd bellen met 030-265-6560. Het eerste liedje van vandaag is...

नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई नागे।

दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे। इस गजल दूर सोनू निगम एंड अल कयाचनिक क्वाम आउट द फिल्म धड़कन। आउट द फिल्म बेल बॉटम कम दाग गजल दूर प्रतिभा सिंह खैर मंग दे।

तुम क्या जानो दिल करता तुमसे कितना प्यार वास आए द फिल्म आशिक कैन आए द फिल्म हम हो गए आपके इस het volgende liedje in het programma Geet om Kilher via Radio SBS. Gezongen door Kumar Sanu en Elke Yachnik komt. De titelsong van de film Hum Ho Gaye Aapke.

मेरा दिल गाए जा जुजु जुबी जुबी जुबी वास आउट द फिल्म मरते दम तक. एंड देन हाउ फर्दर मैट आउट द फिल्म जवान जाने मन. मेरे बाबूला मेरे बाबूला गजोंगे डोर हर्षदीप कौर एंड अखिल सचदेव इज़ हेट फॉलगेंड लीडज़ इन हेट प्रोग्रामा गीतों के लहर.

जो नहीं तो कुछ भी नहीं इस खसोंदर ग्लेन जॉन एंड कम्स आउट द फिल्म वो लम्हे हाउ द फादर मेट बर्थडे बैश खसोंदर यो यो हनी सिंह आउट द फिल्म दिल्ली वाली जालिम गर्लफ्रेंड।

हमको मालूम है इश्क मासूम है, दिल से हो जाती है गलतियां। सोनू निगम और साधना सरगम की आवाज में आपने सुना ये बेहतरीन गाना फिल्म जाने मन से। और अब आप सुनिए उदित नारायण और श्रेया घोषाल की आवाज में फिल्म विवाह से, मुझे हक है।

जन्म जन्म जन्म साथ चलना यूं ही। अरिजीत सिंह और अंतरा मित्रा की आवाज में आपने सुना फिल्म दिलवाले से ये बेहतरीन गाना। और अब आप सुनिए फिल्म फनाह से, देखो ना, सोनू निगम और सुनिधि चौहान की आवाज में।

बड़ी मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल, गोरे गोरे गालों पे है काला काला तिल, इस uit de film लज्जा en is gezongen door Sunidhi Chauhan en Alka Yachnik. Gaan we dan verder met uit de film Dil Dhadakne Do, het liedje Galla Guria.

0: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का दिल दीवाना लगता है, kwam uit de prachtige film Dhadkan van Akshay Kumar, Shilpa Shetty en Sunil Shetty. Dit liedje is gezongen door Nusrat Fateh Ali Khan. Gaan we dan verder met Tequila uit de film Bala.
1: Bala bhaiya ki subah ki khushi mein pesh hai Sony band ki khaas peshkash. Suniye.

जब दिल मिले मिले मिले दिल मिले तब गुल खिले खिले खिले गुल खिले, जब दिल मिले तब गुल खिले, जब गुल खिले तब दिल मिले।

फिल्म यादें से आपने सुना उदित नारायण और आशा भोसले की आवाज में जब दिल मिले मिले मिले दिल मिले। और अब आप सुनिए 14 फेरे से है तू।

टाइटल सॉन्ग फिल्म दीवाने का आपने सुना कुमार सानू, उदित नारायण और अलका याचनिक की आवाज में। अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में है फिल्म एहसास से। तुमसे मिलकर हुआ है एहसास एक नया नया।

आप हमारी जान बन गए। असीस कौर और मिथुन की आवाज़ में आपने सुना खुदा हाफिज से। अब आप सुनिए कृष्णा कोतिश से। आप हमारी जान बन गए। असीस कौर और मिथुन की आवाज़ में आपने सुना खुदा हाफिज से। अब आप सुनिए कृष्णा कोतिश से। शान और सुनिधि चौहान की

अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी, ये चाहे द फिल्म अभिमान है हसन हुंदर लता मंगेशकर। हाउ द फेदर मेट द फिल्म बॉम्बे, कहना ही क्या ये नैनिक अनजान से जो मिले।

कैसा है चिनाव का, इस गजंगा दौर किशोर कुमार। En uit de film Chalti Karam Gaadi komt gezongen door Kishore Kumar weer. Ik lerki bhigi bhagi si.

0: संगीत भरी स्टेशन ये है रेडियो SBS. रेडियो SBS. रेडियो SBS.
1: जब ब्रेत में बोतर नहीं तो खाने में क्या मजा, जब गांव में छौरी नहीं अरे तो भैया जीने में क्या मजा?